0: बनता है, और उसके बाद ओइशी लगकर अमाकते ओइशी बनता है।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
2: अमाकते ओइशी देसु। कोनो तमागो याकी अमाकते ओइशी देसु।
1: जी सामीन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब एक पार्क से मुतालिक तासुरात का इजहार करने वाला एक मकालमा सुनिए।
3: उएनो कोएन दो देशता का?
4: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकात्ता देस।
0: अब इस मकालमे की तशरीह।
3: उएनो कोएन दो देशता का?
1: उएनो पार्क कैसा था?
0: उएनो कोएन यानी उएनो पार्क, ये टोक्यो में वाकई एक बड़े पार्क का नाम है, और दो देशता का यानी कैसा था, ये तासुर पूछने का एक अंदाज है।
4: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकात्ता देसु।
1: वसी और खूबसूरत और बहुत अच्छा था।
0: हिरोकुते, ई इसमें सिफत हिरोई यानी वसी की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है। किरेई दे, ना इसमें सिफत किरेना यानी खूबसूरत की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है। ना इसमें सिफत को अगले इसमें सिफत से जोड़ने के लिए आखिरी ना को दे में तब्दील किया जाता है। तोतेमो योकात्ता देसु का मतलब है बहुत अच्छा था।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
2: हिरोकुते, हिरोकुते किरेई दे, हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकात्ता देसु।
0: अब तासुर के इजहार के कुछ और अल्फाज के साथ मश्क। फर्ज करें कि कोई शख्स आपको बिल्ली की शक्ल की कोई सजावटी चीज तोहफे में देता है। आप कहना चाहते हैं छोटा और प्यारा है। छोटा की जापानी है
2: चीसाई, चीसाई,
0: और प्यारा को कहते हैं
2: कवाई, कवाई,
0: और आखिर में मुखातिब से अपनी बात की तस्दीक के लिए ने लगाएं। सामीन कोशिश करें।
4: चीसकते कवाई देसुने, चीसकते कवाई देसुने।
0: अब फर्ज करें कि किसी ने जापान की ट्रेनों से मुतालिक आपका तासुर पूछा है। आप कहना चाहते हैं ये वक्त की पाबंद और बासहूलत है। वक्त की पाबंद यानी
2: सेकाकुना, सेकाकुना,
0: और बासहूलत
2: बेंडीना, बेंडीना।
0: तो आप किस तरह कहेंगे?
3: सेकाकुदे बेंडी देसुने, सेकाकुदे बेंडी देसुने।
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में कायतों ने खाने का डब्बा निकालने के बाद इस्तेमाल किया है
5: दोजो।
0: दोजो आज के मकालमे की तरह खाना या कोई और चीज पेश करते वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा यह किसी काम की इजाजत देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
6: दोजो,
7: दोजो,
5: दोजो।
1: सामीन अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
2: दोजो।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपने तासुरात का इजहार करती है।
5: ओ बेंटो दा यो, बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोजो।
8: किरे, सुगोई, इतादाकिमास। कोनो तमागो याकी, अमाकुते ओइशी देसु।
9: काइतो वा होंतो नी ल्योरी गा जोजु दा ने।
5: बुकु, शेफु नी नारिताई न दा।
9: ई ने।
1: अब हारूसान की संबील का कॉर्नर। आज का मौजू है ओहानामी यानी चेरी के फूलों का नजारा।
0: हिरा, आप जापान आकर ओहानामी से तो यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हुई होंगी।
1: जी यकीनन, मौसम बहार में खूबसूरत गुलाबी फूलों से लदे चेरी के दरख्तों के साथ चहलकदमी करना और उनके नीचे बैठकर खाना पीना बहुत पुरलुत्फ होता है।
0: चेरी के फूल मार्च से मई तक जुनूबी इलाकों से शिमाली इलाकों की जानिब खिलते जाते हैं। मुल्क भर के लोग अपने अपने इलाके के फूल खिलने के मुतवक्के के वक्त से मुतालिक महकमे मौसमियात की पेशगोई और खिलने के मौजूदा मरहले के ऐलानात के मुंतजर रहते हैं, ताकि इसी लिहाज से अपनी अपनी पिकनिक की मनसूबाबंदी कर सकें।
1: तो ज्यादातर लोग ओहानामी के लिए कहाँ जाते हैं?
0: कई लोग अपने अपने इलाके के बागात या सड़कों के किनारों पर

लगे चेरी के दरख्तों पर फूलों के नज़ारे से लुत्फ अंदोज़ होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ओहानामी के लिए मशहूर मकामात का रुख करते हैं। टोक्यो में उएनो पार्क और शिंजुकू ग्योएन नेशनल पार्क मकबूल मकामात हैं। इनके अलावा दरियाए सुमीदा और दरियाए मेगुरो के किनारे लगे चेरी के दरख्त भी ओहानामी के लिए मकबूल हैं। रात के वक्त बर्फी कुमकुमों से आरास्ता चेरी के दरख्त भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं।